0: Thunder FM का गया था और सिर्फ इधर ही 3.7 Thunder FM की नॉन सेंट रहना भी कर 45 down 6
1: Heart FM
0: इतना रिमर माया. Hey, this next song is brought to you by Virginia Hot Dog. Pasta Hot Dog, Virginia.